0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: We're playing your song.
2: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
5: City FM 89.
6: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
7: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
6: फिर बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना?
7: इन्वेस्ट पार्क?
8: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
7: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
9: मैं हूँ सनम सईद और मैं यूज करती हूँ जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क। जैज 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी। जैज 5G, हमारी सुपर पावर।
3: City FM 89.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: DFM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: DFM 89, your drive along companion.
0: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
1: City FM 89.
2: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
3: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
2: बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना?
3: इन्वेस्ट पार्क?
4: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
5: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
6: मैं हूँ सबा कमर और मैं यूज करती हूँ जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क। जैज 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी। जैज 5G, हमारी सुपर पावर।
7: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
8: यू आर लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो विद शर्मीन।

0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89, we're playing the song.
4: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
3: You're listening to City FM 89.
5: अपने टेक आइडिया को इग्नाइट करें विद प्राइम मिनिस्टर स्पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम, अ नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन फंडिंग इनिशिएटिव. प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए तक और कामयाब प्रोटोटाइप्स को मार्केट रेडी सॉल्यूशंस में बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए तक फंडिंग. अप्लाई बिफोर 26 अक्टूबर एट segms.ignite.org.pk. स्पार्क द आइडिया, एलिवेट द इम्पैक्ट. अ प्रोजेक्ट ऑफ इग्नाइट, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम.
6: मैं हूं सजल अली और मैं हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े और तेज तरीन 5G नेटवर्क जैज 5G पे. तो अब जैज 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी. जैज 5G, हमारी सुपर पावर.
7: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
8: पेपा कार्ड है
9: तो फायदा है.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: We're playing your song.
2: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
5: City FM 89.
6: मैं हूँ सनम सईद और मैं यूज करती हूँ Jazz 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क. Jazz 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो. Jazz 5G आपका, मर्जी भी आपकी. Jazz 5G, हमारी सुपर पावर.
4: We're playing your song.
7: पेपा कार्ड है?

0: PK. Last date, 26 October. Spark the idea, elevate the impact. A project of Ignite, Ministry of IT and Telecom.
1: Naya Pond's Body Lotion, jisme hai 100 tola gold. Bas bottle ko scan karo, scratch karo, aur unique code ko enter karke lo 100 tole gold jeetne ka mauka. Naya Pond's Body Lotion. Skin aur kismat dono chamkaye. Dekha na, miracles happen.
2: पेपर कार्ड है?
3: है? है तो फायदा है, है
2: तो ऐड टू कार्ड है,
3: है?
2: इन स्टोर ऑनलाइन एनएटीएम हर जगह चले फायदे पे फायदा दे
4: पेपाक आज ही अपने बैंक से बनवाए
5: सिटी एफएम 89 वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
6: एवरीबॉडी गो
7: यू आर लिसनिंग टू
8: Non-stop hits.
9: No talk.
10: Just you
9: and the music.
10: Back to back
9: starts now.

0: Groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz
3: 89.
4: We're playing your song.
2: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
5: City FM 89.
6: अपने टेक्नोलॉजी आइडियाज को दें उड़ान विद प्राइम मिनिस्टर्स पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम, अ नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन फंडिंग इनिशिएटिव. बोल्ड आइडियाज को फंक्शनल प्रोटोटाइप्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 करोड़ रुपए तक, जबकि फंक्शनल प्रोटोटाइप्स को मार्केट रेडी सॉल्यूशंस में बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए तक फंडिंग. आज ही अप्लाई करें एट segms.ignite.org.pk. आखिरी तारीख 26 अक्टूबर. स्पार्क द आइडिया, एलिवेट द इम्पैक्ट. A project of Ignite, Ministry of IT and Telecom.
7: मैं हूं सज्जल अली.

0: सुपर पावर।
1: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
2: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
1: बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना।
2: इन्वेस्ट पार्क?
3: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
2: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
4: पेपा कार्ड है?
5: है तो फायदा है।

0: बेबाक आज ही अपने बैंक से बनवाए City FM 89 We're playing your song
1: You're listening to The

0: Dubai Jazz City FM 89
1: On the dial.
0: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
1: City FM 89.
2: मैं हूँ सबा कमर और मैं यूज करती हूँ Jazz 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क. Jazz 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, Jazz 5G आपका, मर्जी भी आपकी. Jazz 5G, हमारी सुपर पावर.
3: पेपा कार्ड है
4: तो फायदा है.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: मैं हूँ सबा कमर और मैं यूज करती हूँ जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क। जैज 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी। जैज 5G, हमारी सुपर पावर।
1: City FM 89,
3: your drive along companion.
1: You're listening to
4: Future Sounds.
3: Future Sounds.
4: Stay fresh, stay lit.
5: New music drops right here.